0: WZBC is robot powered.
1: Are you formally challenging me to undertake a journey around the world?
2: This is the way to travel.
3: बुढ़े हो गए पर दिल अब भी जवां है, आंखों से सुख लेते हैं बड़े शैतान हैं।